0: थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जिउ पेश पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्से सौ पिको द अनलाथो दशमी सरकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक सहसचिव मुकेश डङ्गोलिया त नियुक्त यागुदो सिंहदरबारी चङ्गु प्रधानमन्त्रीले से मन्त्र परिषद ज्याकुई मिकाचङ्गु मन्त्र परिषद बैठक संस्कृति पर्यटनले से नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सहसचिव डङ्गोलिया त महानिर्देशक पदे नियुक्त यागु कोसुगु प्रवक्ताले से शिक्षा नप खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल तैदिको ख मन्त्रसभा बैठक सहकारी जुगो व्यतिथि जाँचबुझ आयोग 2082 या प्रतिवेदन सार्वजनिक यागु कोसुगुडु अध्यय बैठक आर्थिक दह 2083 वो 84 या नीति बर से वो मा या न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण या से मोटो वो प्रति क्विन्टल सोध वो खुस वो खुइटका वो मध्यम वा या मु प्रति क्विन्टल सोध वो च्यास व खुइटका कोसुगु धागुदो मनप्रसाद बैठक नेपाल चिन स्वाइगु विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना चिलिमे केरुङ या कारुण्या नीति चिन सरकार या त छोइगु लिस लेटर अफ रिप्लाइड स्वीकृति यागु कोसुगु धका मन्त्री पोखरेल धाइदिल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह थौ युरोपली सङ्घ युयु दे या गैर आवासीय राजदूत व मिसन नायपी नाप मङ्का कथा नाप्लाइगु ज्यादलदो वेक्ल सुतेसिया छिन्सता त्या इले सिंहदरबारे नाप्लना सल ब्याकेगु ज्यादलदो प्रधानमन्त्री या प्रेस विज्ञ दिपा दाहाल या कथ नेपा या आ या प्राथमिकता निगो पछि स्वापु या त तब्याकेगु व छप्प जुया ज्या यागु विशेष सल जुई तेङ्गु वेक्ल कनादिल थोनिहने चैत्र 25 गते प्रधानमन्त्री शाह नेपा या तिथि दे या राजदूत पि नाप मङ्का कथ नाप्लना सल ब्याका दिधङ्कु गुदु प्रधानसभा या बैठक थौ चोनि तेङ्गुदु संसद सचिवालय कथन सुतेसिया छिन्सता इले प्रतिनिधिसभा बैठक चोनितेङ्गु ख थौ चोनिगु बैठके पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिनिधिसभा दुज निर्वाचन नापाङ्गु संशोधन विधेयक मतदाता नाथल नापाङ्गु संशोधन विधेयक प्रस्ताव निभएको ज्यादलदु महोत्तरिया बर्दिवास नगरपालिका तिन कालापानी या बिपी राजमार्गे जिल्ला वन ज्याकु या गाडी मित या च्याका बिगुदु जिल्ला वन ज्याकु या कर्मचारी दुगु बा दुई झ 2749 नम्बर या गाडी मित या बिगु इलाका प्रहरी ज्याकु बर्दिवास धागु ख मिग कालपानी लाग्या बस्ती चिकेत सुच तिकेत ओङ्गु जिल्ला वन ज्याकु महोत्तरिया कर्मचारी दुगु गाडी स्थानीय पिन्स मिग प्रदर्शन या झोले मी त गुख वन ज्याकु या कर्मचारी या त धासा प्रहरी उद्धार या गुख कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम यौनजन्य हिंसा पीडित या त याक्न न्यायवित मन्त्रालय प्रतिबद्ध दु धाइदिगु दु प्रधानसभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति या मिग चङ्गु बैठके वेक्ल न्यायवित नीतिगत सुधार यागु धाइदिल वेक्ल रेडियो नेपाल प्रसारण याना चोङ्गु कानुन या ज्याजोल गामे कानुनी शिक्षा वित ता लागु नपन हेतना दिल थे तथि प्रतिसभा या कानुन न्याय व मानव अधिकार समिति बैठके सांसद पिन्स होल्डिङ सेन्टर तया तपि नागरिक त याक्न प्याचे नक्सा तेमा धका इनाप यागुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ल दैगु लागाया आयोजना सरकार अतिक महत्त्व बिगु धैदिगु दु कोलेखानी जलविद्युत आयोजना या त दुग्यङको सेतुङका वेक्ल थथे धैदिगु ख नेपाया ऊर्जा सुरक्षा औद्योगिक विकास व आर्थिक उपाय नीति सरकार अतिक महत्त्व बिगु वेक्ल कनादिल सर्वोच्च अदालत पूर्व प्रधानमन्त्री व नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा त गिरफ्तार मया त अन्तरिम आदेश जारी यागुदो न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल व नित्यानन्द पाण्डे इजलासम हिग अन्तरिम आदेश जारी यागु ख चैत्र 24 गते यहाँ जिल्ला अदालत पाखे जोनीगु भो पिथङ्गु ख गिरफ्तारी पुर्जी जोनीगु भौँ निष्क्रिय जुगु सर्वोच्च अदालत आदेश बिगु ख नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील दुज नुदा या त अपिकेत पदाधिकारी वा केन्द्रीय दुज पिन्त भाला ल लागुदु बैठक डाक्टर डिला सङ्ग्रहालय या त कोशी प्रदेश, बहादुर सिंह लामा या त बागमती प्रदेश, उदय शमशेर राणा या त सुदूरपश्चिम प्रदेश, मुक्ता कुमारी यादव या त गण्डकी प्रदेश, जानकी सिंह या त कर्णाली प्रदेश, देवराज चालिसी या त मध्य प्रदेश, ओ अमर सिंह पुन्य त लुम्बिनी प्रदेश या भाला ल लागु ख। नेकपा एमाले केन्द्र दुजो पिनेगु ज्या धल प्रस्ताव या त लिपाङको रूप वित्त नायक केपी शर्मा ओली ओ मु छेन्जे शङ्कर पोखरेल या त भाला ल लागुदो। एमाले त चिल्पा दे जुइगु स्थानीय तह निर्वाचन या त नाप ध्यान यता या केन्द्रीय दुजपिन त स्थानीय तह केन्द्रित ओ जनसङ्गठन या इन्चार्ज या भाला ल लागु ख। एमाले नाय ओली या निवास गुन्डी चङ्गु सचिवालय बैठक के हबगु उगु प्रस्तावे वगु क्षेत्र या त ध्यान यतया मुछेन्जे पोखरेल ना या परामर्शे मागु परिमार्जन यागु व नायन लिपाङ्गु रु बिगु सर्कुलर छेगु निर्णय जुगु उप महासचिव लेखराज पट्टन जानकारी व्याधिको ख। सुनिङ्क यहाँको बैठक या लिपाङ्गु दि नाय ओली सम्बोधन यनादिसे पार्टी एकता निकेत इनाप यनादिको ख। बैठकमा पार्टी पुनरुद्धार गठन व प्रतिसभा निर्वाचन या समीक्षा लिसिने विषयले थप अध्ययनना लक्ष्य दुनिया क्षेत्र वित्त पार्टी अनुको रामबहादुर थापा या कचिते कार्यदल निसुनेको निर्णय यागु वेक्लकनादिल समिति नोकोपी विष्णुप्रसाद पौडेल व पृथ्वीसभा गुरुङ मुच्यान्जे पोखरेल उपमहासचिव भट्ट छ्यान्जेपी छविराज विश्वकर्मा पद्मा अर्याल भानुभक्त ढकाल व प्रदेश या इन्चार्ज चुनिगु कोसुगु वेक्लकनादिल। सरकार सरकारी कुरियर सेवा बिगु तातुना झ्याकुगु थो सेवा दे या खुइगु जिल्ला थेङ्गुदु। हुलाक सेवा विभाग सरकारी सेवा इनेगु प्रणाली या त डिजिटल व व्यवस्थित यागु कुत कथ राहदानी लाइसेन्स शैक्षिक प्रमाणपत्र नापया भो छेछे थेङ्केगु ज्या झ्याकुगु ख। विभागीय महानिर्देशक मनमाया भट्टर या कथ थो सेवा तबनाचुङ्गु नेतना दिल। जनयुद्धकाले तिगु बाँके या नैरनारापुर छुट्टी भन्सार हाक्न चाले तेङ्गुदु। भन्सार नियमले 2083 कथा बाँके या नैरनापुर या छुट्टी भन्सार पलिस्ता जुइ तेङ्गुली आ भन्सार च्याके तेङ्गु ख। सङ्गीत ख या लोक हाम वरिष्ठ स्वरोत वादक सुदर्शन राजोपाध्याय या त भारतीय कला क्षेत्र पुरस्कार पाखे हङ्गुदु। राजोपाध्याय या त महाराष्ट्र पुने अखिल लोक कला कल्चरल अर्गनाइजेसन गोसा गोगो भारत उत्सव 2026 या शिर्पा ल लागु ख। अर्गनाइजेसन मु छ्यान्जे डाक्टर प्रमोद नानवारी या कथ भारत उत्सवे भारतीय अतिथि राज्य सोधो न्यासो शिव अपो कलाकार पिन्स भारत नाट्यम कथक लिसे या लोक कला न्यव्यादिगु ख। मे 16 निसे 22 तारिक तक जुगु उगु भारत उत्सवे राजोपाध्याय त निर्णायक भाला क खा त बोना तगु ख। निर्णायक जुत पुने थेङ्का दिम वेक या त प्रतिष्ठित कला क्षेत्रम पाके हङ्गु ख। जनआस्था वापौ या प्रधान सम्पादक लिसे विश्व पत्रकार महासङ्घ या नोकु किशोर श्रेष्ठ या त ख्याचौ दबा बिगु कुत जुगु धासे पत्रकार सङ्गठन त्यसमा आपत्ति पङ्कुगुदु। प्रेस चौतारी प्रेस सेन्टर नेपाल नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु पाखे ब्याग्ल ब्याग्ल विज्ञप्ति पिथसे प्रेस काउन्सिल या पुलाम नायतक ज्यादिम श्रेष्ठ लिपाङ्गु इले राज्य निगरानी लानाचुङ्गु खन हेत्ना तगुदु। प्रेस चौतारी नेपाल या मुच्यान्जे हिरमान लामा प्रेस सेन्टर या मुच्यान्जे मज घरती मगर नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या मुच्यान्जे कृष्ण कुमार मानन्दर के थथे विज्ञप्ति पिथना दिगु ख। खुसी चिगु झोले डब्बे जुया बेपत्ता जुपी निम ल्याम या सिम लुगुदु। बाङ्गुती खुसी छिगु झोले रौथट ओ सिन्धुलिया सिमाना चप्सी दैगु थास शनिबार हिने निम ल्याम मिजम्पी बेपत्ता जुगु ख। खुसी दबे जुया बेपत्ता जुपी लालबन्दी नगरपालिका नौ बस्तीपुरिया छिन्च्याद दुम रोहित महतो व लालबन्दी नगरपालिका छ या थियो निद दुम गणेश महतो या सिम मालेगु झोले मिग बाङ्गुती नगरपालिका 11 खुसी सिथे लुगु प्रहरी थागुदु। अमेरिका व इरान दोथी शान्तिवार्ता न्याइगु होता या बुख लिपा अन्तर्राष्ट्रिय चिकन बजारे सोमबार नुगु कारोबार न्याना कच्चा चिकन या भात थियो मथ न्यागो प्रतिशत कुहा वगुदु मध्य पूर्व लागे तनाव हो जुइगु आपूर्ति अवरोध चिलाउनीगु आशय लगन गर्थाए दुई बिक्री दबाब अपोगुली बजा कुहा वगु खनिदु गुख जुलाईले आपूर्ति जुइगु पश्चिम टेक्सास मध्यपूर्ति कच्चा चिक छगु यी ब्यारेल या 5.35 अमेरिकी डलर कुहा उया 91.25 अमेरिकी डलर थेङ्गु ख थो थ्यमथ न्यागु फुटी 53% कुहा वगु ख अथे ब्रेन्ड कच्चा चिकन नाप 5.57 अमेरिकी डलर कुहा ओना छगु ब्यारेले 97.97 अमेरिकी डलर कुहा वगु ख थोथ्यम 5.38% कुहा वगु ख थोए दोथी इरान आइआरजिसी लिपाङ्गु नि पेगो दुनी स्विसग लहजाज हर्मुज पार यागु जानकारी बिगुदु थौ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा छु थासे मध्य प्रदेश नाप कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या तराई व लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा पच्चा थासे नयना लाप्सा तोया वा वैगु धागुदु नाप लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागा छगुनिगु थासे पच्चा वा वैगु धुकुमा यागुदु सुदूरपश्चिम व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागा ता नोइगु सम्भावना दु अथे मध्य प्रदेश नाप कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या तराई लागा पच्चा थासे वा फे वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु सोनिगले मिग सुइगु शिव अप क्वाजो लुगले थौन अथे जुइगु धागुदु सोनिगले थौ सुते न्याता इजुया पिङ्गु मिनिटे लुगु सूर्य शनिले खुता इजुया नेगुगु मिनिटे बी नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
4: नेपालको समावेशी आवाज।

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। विपक्षी दल सभाका विरोधक बीच प्रतिनिधि सभाक बैठक कार्यसूचीमे प्रवेश कयलक अछि। 15 मिनटके लेल स्थगित भेल बैठक लगभग 1 घंटा पश्चात पुनः संचालन भेल अछि। बैठक प्रारम्भ भेलाक बाद विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद रमेश मल एहिसँ पहिने बैठकमे रासपा सांसद जगदीश खरेल ललितपुर द्वारा प्रयोग कयल गेल तमाशा देखाओल शब्द असंसदीय भेलाक कारणे रेकर्डसँ हटेबाक मांग कयलनि। सभामुखसँ समय मांग कऽ राज्यसभा सांसद खरेल स्वयं प्रयोग कयल तमाशा शब्द संसदीय मर्यादा विपरीत नहि रहल स्पष्ट कयलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद निष्कल राय सभामुखक आदेश विपरीत अपन पार्टीक सांसद गीता कुमारी सेन्दाङके बैठक कक्षसँ बाहर निकालल गेल कहैत नियमापत्ति कयलनि। सभामुख खरेल सांसद सेन्दाङ सभामुखक आसन दिस मोबाइलसँ फोटो आ वीडियो खींचल सम्बन्धमे जाँच करबाक लेल मर्यादा पालक के निर्देशन देल स्पष्ट कयलनि। ओ सेन्दाङ के बैठक सँ बाहर निकालल नहि गेल अछि, सभामुख अर्याल कहलनि। प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह वास्तविक आ देखबासँ नेपाली नागरिकक दैनिक जीवन स्तर उठेबाक लेल अपन नेतृत्वक सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालयमे आइ काठमाण्डू आ नया दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ यू तथा एकर सदस्य राष्ट्रक राजदूत तथा काठमाण्डू स्थित अन्य देशक राजदूत सब संग भेल संयुक्त भेटवार्तामे प्रधानमंत्री शाह वर्तमान क्षणक अत्यावश्यकता स्वयं सबके सौंपल गेल गहन जिम्मेवारी के पूर्ण रूप में बोध कऽ रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री शाहक प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहालक अनुसंधान एहि भेटक क्रम में प्रधानमंत्री शाह नेपाल में हाले संपन्न निर्वाचन परिणाम सँ सुशासन आ समावेशी आर्थिक समृद्धिक लेल स्पष्ट तथा निर्णायक जनादेश देल गेल आ नया सरकार गठन भेलाक बावजूदो नीतिगत निरंतरता रहबाक स्पष्ट कयलनि। नेपालक सुशासन अर्थतंत्रक समावेशी वृद्धिक लेल अपन नेतृत्वक सरकार प्रतिबद्ध रहल उल्लेख कयलनि। जनताक लेल नया अवसर सृजना करबाक लेल सरकार विश्व बाजार सँ लाभान्वित होबय चाहल, बृहत लगानी आकर्षित करबाक लेल प्रक्रिया सबके थप सहज बनबैत नव प्रवर्तन के प्रोत्साहन तथा स्थायी विकास हासिल करबाक लेल प्रतिबद्ध रहल प्रधानमंत्री शाह बतौलनि। प्रधानमंत्री शाह नेपाल संतुलित एवं व्यावहारिक विदेश नीतिक अवलम्बन के निरंतरता देबाक स्पष्ट कयलनि। नेपालक विकास तथा समृद्धिक लेल निरंतर सद्भाव आ सहयोग पहुँचबैत आयल स्पष्ट करैत प्रधानमंत्री शाह नेपालक सब विकास साझेदार आ मित्र राष्ट्र सब प्रति आभार प्रकट कयलनि। संगे ओ व्यापार लगानी हरित ऊर्जा जलवायु पर्यटन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्र में सहकार करबाक लेल आइ के आओर सुदृढ़ बनेबाक लेल नेपाल लागि पड़ल स्पष्ट कयलनि। भेटक क्रम में प्रधानमंत्री शाह विश्वक विभिन्न भूभाग सब में द्वंद्व निरंतर प्रभाव पड़ रहा समय सर्वसाधारण नागरिक सबसे अधिक पीड़ा भोगय पड़ल कहत शांति कायम करबा में सैन्य मुठभेड़ से संवाद कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्राथमिकता पाओल जबाक प्रधानमंत्री शाह जोर दलन। भेंट में काठमांडू और नया दिल्ली स्थित यूरोपियन यूनियन के राजदूत सब तथा काठमांडू स्थित अन्य राजदूत सब शांतिपूर्ण रूप में चुनाव सम्पन्न कैल कहत नेपालक प्रशंसा कने छलथि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा मंत्रालय माथत के संचार संस्था सभक वार्षिक लेखा परीक्षण यथाशीघ्र सम्पन्न करबाक लेल तथा लंबा समय से उठबाक लेल बाकी बक्यौता रकम असूली प्रक्रिया के तीव्रता देबाक लेल निर्देशन देलनि अछि। आइ ई संस्था सभक प्रमुख सब संग मंत्रालय में भेल छलफल के क्रम में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा वर्षों से ई रहल लेखा परीक्षण तथा बाकियोता व्यवस्थापन के प्राथमिकता में रखबाक लेल निर्देशन देलन अछि। बैठक में गोरखापत्र संस्थान आ सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पूर्व नेपाल टेलीविजन तथा रेडियो नेपाल संरचना समेटल गेल संस्था के आर्थिक वर्ष 2079-80 एम्हर के लेखा परीक्षण कार्य अखनो सम्पन्न नहीं भ चुकल जानकारी कहने छलथि। एहि प्रति असंतुष्टि जनबैत संचार मंत्री तिमिल सिन्हा रोकल गेल लेखा परीक्षण तत्काल आगू बढ़ाकर निर्धारित समय भीतर निष्कर्ष में पहुंचाकर संबंधित निकाय के प्रमुख के निर्देशन दलन। ओ लेखा परीक्षण ढीला भेला पर संस्थागत पारदर्शिता कमजोर हेबाक आर्थिक गतिविधि ऊपर प्रश्न उठबाक तथा सार्वजनिक संस्था ऊपर के विश्वास में असर करबाक बात बतौलनि। संचार मंत्री तिमिल सिन्हा संस्था सभक उठबाक बाकी रकम असूलीक लेल स्पष्ट कार्ययोजना बनेबाक लेल आवश्यक पड़यवला कानूनी प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक लेल अनियमित अनुगमन सेहो करबाक लेल निर्देशन देलनि। छलफल के क्रम में जानकारी कराओल गेल अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाक लगभग 35 करोड़, गोरखापत्र संस्थानक लगभग 41 करोड़,
तथा राष्ट्रिय समाचार समिति रासके लगभग 1 करोड़ टका बकौता उठा बाँकी रहल देखल गेल अछि। ई रकम विभिन्न सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापनदाता संस्था तथा सेवा उपभोक्ता सब सँ असूल होयब बाँकी रहल जनाओल गेल अछि। विशेष कऽ गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था आ रासा सन पुरान सरकारी संचार संस्था सब अधिक समय सँ आर्थिक संकट, संरचनागत जटिलता, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा डिजिटल रूपांतरणक चुनौती सँग लड़ रहल अछि। विज्ञापन बाजार संकुचन, सरकारी निकाय सँ होबयवला भुगतानी में ढिलाई तथा परंपरागत संचालन प्रणालीक कारण ई संस्था सभक आमदनी में दबाव बढ़ैत गेल देखल गेल अछि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय किसान के वैज्ञानिक आधार पर रासायनिक मल वितरण करबला भेल अछि। मंत्रालय धान खेती करयवला कृषक के रासायनिक मल अभाव नहि होमय देबाक लेल ओकर खेती करबाक अनुसार जमीन के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के अनुपात में मल उपलब्ध कराबय लागल अछि। लगभग 1,45,000 मैट्रिक टन रासायनिक मल मौदात रहल जनाओल गेल अछि। धान खेती के दृष्टिगत कर यूरिया DAP मिलाकर कुल 40,000 मैट्रिक टन मल जल्दी आयात कैल जेबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल। मंत्रालयक सूचना अधिकारी लाल कुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि। मध्य प्रदेशक प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र लाभकर्ण प्रदेश जन लोकपाल आयोगक नवनियुक्त सदस्य संजीव कुमार झा आ कुमारी सुजाता बीमल के पद तथा गोपनीयताक शपथ करौलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय में आई आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर कर्ण नवनियुक्त सदस्य के शपथ करौलनि। प्रदेश जन लोकपाल आइन 2077 के दफा 23 के उपदफा 2 अनुसार गठित समिति के जेठ 6 गते के सिफारिश अनुसार प्रदेश प्रमुख सँ आयोगक सदस्य पद पर नियुक्त हुनका सबके शपथ ग्रहण कराओल गेल जनाओल गेल अछि। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश जन लोकपाल आयोगक अध्यक्ष राम सहारा यादव, आयोग सचिव डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र तथा प्रदेश प्रमुख कार्यालयक सचिव नारायण प्रसाद दहाल सहितक सहभागिता रहल छल। कार्यक्रम पश्चात संक्षिप्त मंतव्य व्यक्त करैत सदस्य झा आयोग प्रति नागरिकक विश्वास अभिवृद्धि हेबासँ निष्पक्ष, पारदर्शी आ जन उत्तरदायी ढंग सँ काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ सुशासन प्रवर्धन तथा जन शिकायत संबोधन के प्राथमिकता में राखि कऽ कार्य करबाक बात बतौलनि। एहिना सदस्य बिमल आयोग के नागरिक मैत्री संस्था के रूप में स्थापित करबाक लेल अपन भूमिका सक्रिय रहबाक बात बतौलनि। ओ सेवा प्रवाह में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सुशासन कायम करबा में आयोग प्रभावकारी भूमिका निर्वाह करबाक विचार व्यक्त कयलनि। जनकपुर धामक जानकी मंदिर सहितक अन्य मठ मंदिर सब अश्लील वीडियो तथा फोटो खिंचबाक तथा धार्मिक आस्था में चोट पहुँचेबा सन गतिविधि केनिहार ऊपर कड़ा कार्यवाही करबला भेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अंतर्गत रहल धार्मिक संस्था बजरंग दल विभिन्न मांग सहित आई धमसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद लुटेल के ज्ञापन पत्र देलाक बाद प्रमुख जिलाधिकारी ई बात बतौलनि। ओ हिंदू धर्मावलंबी सभक आस्था केन्द्र के रूप में रहल जानकी मंदिर, राम मंदिर, जनक मंदिर सहितक अन्य प्रमुख धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वक स्थल के बदनाम करबा सन टिकटॉक वीडियो तथा अश्लील फोटो खींचल गेल पाओल गेला पर मोबाइल कैमरा तथा अन्य सामग्री सब जफत कर कानूनी कार्रवाई हेबाक आ हेबाक बात उल्लेख कयलनि। मंदिर भीतर के अश्लील हरकत रोकबाक लेल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीक संगे मंदिर व्यवस्थापनक संगे समन्वयक निजी क्षेत्रक सुरक्षाकर्मी सब हारक मंदिर क्षेत्र में परिचालन कयल जायवला सन आइए जिला प्रशासन कार्यालय परिपत्र जारी करबा सन प्रतिबद्धता प्रमुख जिलाधिकारी लुटेल ई विचार व्यक्त कयलनि। बजरंग दल मंदिर भीतर हिंदू अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबी के प्रवेश करबा में निषेध कयल जेबाक, अश्लील वीडियो टिकटॉक फोटो खींचबाक लेल निषेध कयल जेबाक, अन्य असामाजिक तथा अधार्मिक गतिविधि नियंत्रण हेबाक सहितक 4 मुद्दाक मांग सही पत्र सहितक ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मंदिरक सुरक्षा व्यवस्था कड़ा तथा सुदृढ़ बनेबाक लेल सेहो धार्मिक संस्था बजरंग दल मांग कयलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझेबाक कार्यक्रम में धनसाक प्रहरी, उपेक्षक तथा अन्य सुरक्षा निकायक प्रमुख सब उपस्थिति रहल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ कंचनपुर शाखा एहि वर्ष सशक्त पत्रकारिता सम्मान 2083 पत्रकार शेर बहादुर सिंह के सम्मान कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत आ संयुक्त राज्य अमेरिका मंगल दिन महत्वपूर्ण खनिज आ दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्व सभक आपूर्ति, खनन आ प्रशोधन सुरक्षित करबाक लेल द्विपक्षीय समझौता पर आइ हस्ताक्षर कयलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री से संसद में उठे प्रश्नों का जवाब देने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन की कार्यवाही की बाधित। प्रधानमंत्री जल्द ही संसद में उपस्थित होकर जवाब देने की बात की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सांसदों को दी जानकारी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ की सामूहिक चर्चा। नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। और भारत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने में 5 मजदूरों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक विपक्षी दलों के बार बार के अवरोध के बीच संचालित हुई, जिसमें प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083 और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पारित किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोविता गौतम द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को धारा दर धारा चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी तरह बैठक में पर्यटन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक चर्चा भी हुई। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने पर्यटन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर हुई सैद्धांतिक चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने पर्यटन क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए नए पर्यटन स्थलों की खोज, पर्यटन व्यवसाय को जनजीवन से जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक हस्तांतरण को साथ साथ आगे बढ़ाने जैसे विषय पर सुझाव दिए। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से संसद में उठे सवालों का जवाब देने और संसद के प्रति जवाबदेह बनने की मांग करते हुए बैठक में अवरोध किया था। विपक्षी दलों के अवरोध के बीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने पर्यटन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान भी विपक्षी दलों का अवरोध जारी रहने पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दूसरी बार बैठक शुरू होने पर भी विपक्षी दलों का अवरोध जारी रहा। इस दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक कविंद्र बुरला कोटी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एक सप्ताह के भीतर सदन में उपस्थित होंगे। विपक्षी सांसदों ने सभामुख से प्रधानमंत्री को संसद में उपस्थित होने का रूलिंग देने की मांग की। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री शाह जल्द ही संसद में उपस्थित होकर उठे सवालों का जवाब देने की तैयारी में है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल 13 गते बुधवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार नेपाली नागरिकों के दैनिक जीवन स्तर को वास्तविक और दिखाई देने वाले तरीके से सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में काठमांडू और नई दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ तथा उसके सदस्य देशों के राजदूतों और काठमांडू स्थित अन्य देशों के राजदूतों के साथ हुई संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि वो वर्तमान समय की आवश्यकता और अपने ऊपर सौंपी गई गंभीर जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल में हाल ही में संपन्न चुनावों के परिणाम ने सुशासन और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई सरकार बनने के बावजूद नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी। सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही जनता के लिए नए अवसर पैदा करने, वैश्विक बाजार में लाभ उठाने, बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा सतत विकास हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति को आगे भी जारी रखेगा। बैठक में काठमांडू और नई दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ के राजदूतों तथा काठमांडू स्थित अन्य देशों के राजदूतों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए नेपाल की सराहना की। उन्होंने सुशासन, आर्थिक विकास और समृद्धि के जनादेश के साथ नई सरकार का नेतृत्व संभालने पर प्रधानमंत्री शाह को बधाई भी दी। संचार तथा सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने मंत्रालय के अधीन संचार संस्थानों का वार्षिक लेखा परीक्षण जल्द पूरा करने तथा लंबे समय के बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। आज मंत्रालय में उन संस्थानों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने वर्षों से लंबित लेखा परीक्षण और बकाया प्रबंधन को प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि गोरखापत्र संस्थान और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल का आर्थिक वर्ष 2079-80 के बाद का लेखा परीक्षण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षण में देरी होने से संस्थागत पारदर्शिता कमजोर होती है, आर्थिक गतिविधियों पर प्रश्न उठते हैं तथा सार्वजनिक संस्थानों पर लोगों का विश्वास प्रभावित होता है। संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने बकाया रकम की वसूली के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाने, आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा नियमित अनुगमन करने का भी निर्देश दिया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने विदेश में रह रहे नेपाली नागरिकों से मोफा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से कौंसुलर सेवा लेने का आग्रह किया है। आज कौंसुलर सेवा विभाग द्वारा आयोजित मोफा मित्र मोबाइल ऐप शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ऐप सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सरल और नागरिक मैत्री बनाने में प्रभावी साबित होगा। मंत्री खराल ने बताया कि ये सेवा देश के सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों तथा विदेश स्थित सभी नेपाली कूटनीतिक नियोगों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष में इस सेवा को सभी स्थानीय तहों तक विस्तार करने की योजना है। मोफा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने सर्पदंश से बचने की अपील की है। गर्मी बढ़ने के साथ सांप बिलों से बाहर निकलकर लोगों को काटने लगते हैं, इसलिए मंत्रालय ने सतर्क रहने का आग्रह किया है। शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के निदेशक डॉ. अनूप बास्तोला ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ अस्पताल में सर्पदंश के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने जानकारी दी कि काभरे, धादिंग, तनहू, रामेछाप और दोलखा सहित विभिन्न जिलों से सर्पदंश के अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर बस्तुला ने कहा कि सांप काटने पर प्रभावित हिस्से को बिना हिलाए स्थिर रखना चाहिए। उन्होंने सर्पदंश वाली जगह को काटने, चूसने या बांधने जैसी गतिविधियां ना करने, किसी भी प्रकार का मलहम, रासायनिक पदार्थ, गर्म या ठंडी चीजों का प्रयोग न करने, सांप की पहचान करने तथा मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की अपील की है। नेपाल पुलिस ने वैदेशिक रोजगार के नाम पर विभिन्न देशों में भेजने का झांसा देकर आम लोगों से करोड़ों रुपए ठगी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर आज साझा किया है। उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रवक्ता एसपी रामेश्वर कार्की ने जानकारी दी कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने 2,40,00,000 रुपए से अधिक रकम वसूलने के बाद संपर्क तोड़ दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा आज अजयगढ़ विकासखंड के बिहार पूर्वा ग्राम पंचायत के नया पूर्वा गांव में हुआ। पन्ना जिला प्रशासन के जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की ओर से कुएं का निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार हादसे में 2 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री से संसद में उठे प्रश्नों का जवाब देने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज भी सदन की कार्यवाही की बाधित। प्रधानमंत्री जल्द ही संसद में उपस्थित होकर जवाब देने की बात की सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सांसदों को दी जानकारी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ की सामूहिक चर्चा। नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। और भारत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक निर्माण कुएं की मिट्टी धसने से 5 मजदूरों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: *14 ह्यास डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
8: नेपालको समावेशी आवाज।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: आई एम सॉरी नमे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती

0: ए नानी हो, कता जानी हो?
1: अनि देखेनौ र डोको नाम्रो बोकेर घाँस काट्न जान लाग्यो?
0: ए हो त नि गाँठे ममोरनी तत्तेरी।